0: जैसे ज्ञान का प्रकाश वक्त पतक में तो रहती है, साफ नहीं है, तो जो घबराहट एक ही तत्व है उसको पहचान लिया। हमारे भीतर भी आकाश है, हमारे चारों ओर आकाश है, बाहर भी आकाश है। अब एक घड़े को हम खरीदते, एक बर्तन खरीदते हैं, किस चीज का महत्व है? मिट्टी का है और बर्तन के अंदर जो जगह है उसकी महत्व है। मिट्टी का गोला कोई रखे तो कौन खरीदेगा, पर वो गोले के भीतर उसको बर्तन बना देगा, उसी गोले से वो गर्मी में पानी रख पाओगे, उसमें कुछ तो रख पाओगे, तो वो बर्तन बन गया, कुल्हड़ बन गया, चाय पी लेते। आजकल ट्रेन में भी मिट्टी की कुल्हड़ चल रही है, अच्छी बात है। बायोडिग्रेडेबल विदेश में कहते हैं, सब प्राकृतिक रूप से सब प्रकृति में समा जाता है, ऐसी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ किया करते थे, पत्तल का धोना, मिट्टी का कुल्हड़, ये प्लास्टिक पेपर से कितना नुकसान कर रहे हैं हम पर्यावरण को। तो कुल्हड़ का मां दाम उसके भीतर जो जगह है खाली जगह उसका है, इसी तरह से तुम्हारे भीतर जो खाली जगह है आकाश है उसी का तो महत्व है, उसी का तो नाम है, उसी का ये रूप है बाहरी रूप। उस चीज को यदि तुम नहीं मानोगे, नहीं देखोगे, तो बाहरी ढांचे को पकड़ के बैठोगे तो बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारा होएगा। उसका पहचानो जो बाहर भीतर तुम हो, सिर्फ तुम्हारे शरीर के अंदर तुम नहीं हो, तुम्हारे शरीर के बाहर भीतर दोनों जगह तुम हो। जैसे मोमबत्ती, ये कोई बत्ती से तुम ज्योत जलाते हो, ज्योत कैसे बत्ती के चारों ओर आवृत होके जलता रहता है, इसी तरह से तुम्हारे चेतना शरीर के चारों ओर है। शरीर बाती है, मन ज्योति है, आत्मा ज्योति है। उस ज्योति को पहचानो, ये कह रहे हैं। इस भ्रम से तुम बाहर आओगे, तुम ये परमानंद रूप तुम्ही हो, ये तुमको महसूस होने लगेगा।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था FM अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम मधुरम यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नम्बर 13 न्यू रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
0: नमस्ते स्वागत अनि अभिवादन यो कार्यक्रम मधुर

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई सधैँभरि।

0: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: अध्यात्म ज्योति 104.8।

संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या कोई भी नहीं पहुंचा था? सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं।

घाह। डरे और सहमे हुए कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं, जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं।

अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदि कर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। एक होता है सुना हुआ, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो थियोरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है।

कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई सौ सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या यह ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा।

कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वो नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल, ऐसे स्वरूप को तो बस आप नमस्कार ही कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं।

अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है, विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे, उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है।

अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वो दोस्त की तरह सखा की तरह व्यवहार करता था वो तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूर वीर समाते जा रहे हैं क्योंकि वो काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी कि कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था कृष्ण वो नहीं, ये अब अर्जुन जान चुका।

कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।

अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद बेहद बेहद प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वो खुश कैसे ना हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। ये कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए कि हम जो अपनी कार, घर या पैसे से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं।

हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षण भंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं। वो ही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है।

अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। लेकिन भला हो इस गीता का, संजय का, महाभारत का कि हम ये सब कम से कम सुन तो पाए।

कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का ये रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था।

कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि चार भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं।

संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये चार भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सकें, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो, वो भगवान का रूप पहचान सकें।

भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था।

कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वो रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वो घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है।

0: न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का यह चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। आपको हैरानी नहीं होती कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि कृष्ण उनका प्रिय है, वो उनको पसंद है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण के इस रूप को कभी देख ही ना पाए? देवता तक को कृष्ण ने अपने इस रूप से वंचित किया हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को ढोंग और पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। वो दिखावे के एकदम खिलाफ हैं। मन में सच्चाई की, अनन्य श्रद्धा की वो बात करते हैं, इसीलिए अपने इस रूप को उन्होंने इतना दुर्लभ बना रखा है।
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है और ये उपाय एकदम आसान है। एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कैसे, जरा सुनिएगा। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप भी दिखेगा, मेरा तत्व भी समझ में आएगा। अगर आप में एक ही भाव है, अगर मन में सिर्फ एक ही भाव है,

असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, यह था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप और साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं 12वें अध्याय में फिर से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।

युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के

हे कृष्ण, कैसे बहाव में अपना ये रक्त, मैं दुविधा में हूं और अशक्त। ना ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं, रखता हूं धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया।

है पस्कर। चरचोल मन की कमजोरियां, रिश्तों की मजबूरियां, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாக்கி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहे हमी गर्व करे यहाँ को विश्वास जितना सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छानामुनि चाँदी का सबै सामानहरू।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423556।
2: श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबास सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
3: टुगेदर वी डेलिभर।
2: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076788।
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: रसावेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

अपने गर्म गर्म दुआ करना, दुआ करना के डायमंड जुबली हो जाए, हाय हाय हो जाए। पहले हफ्ते में है अपना प्यार सनम, हाँ पहले हफ्ते में है अपना प्यार सनम, दुआ करना के जुलूस।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई भयो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: श्रेष्ठ टेलरिंग
1: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग
2: अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रविशंकरज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: और ये काम हुआ है भारत सरकार को इस तरह से धार्मिक क्षेत्रों की अभिवृद्धि करने के लिए बहुत बधाई देना चाहिए। देवाश्रय और राजाश्रय दो चीज होती है। राजाश्रय से धर्म पलपता है, दैवाश्रय से जीवन में उत्थान होता है। अब हम दैवाश्रय के लिए तो ये सब करते हैं, दैव पर आश्रित रहना, तब जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्या हमारे तो कोई है, हमारे गुरुदेव है, हमारे कोई है, ये भाव हमारे भीतर होता है तो कभी हम मुरझा नहीं जा सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। इस तरह से जीवन में एक नया सुगंध आए उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, है ना? हाँ, घर घर ध्यान होना चाहिए। हर घर में लोग ध्यान करेंगे तो मन प्रसन्न रहे। राम का अर्थ ही यही है, राम अने रश्मि, जिसे अंग्रेजी में रेस बोलते हैं, रश्मि रेस। देखो 70% अंग्रेजी भाषा संस्कृत से भरा हुआ है। आपने कभी सोचा? कितने लोग नहीं सोचे, हाथ उठाए। कितने लोगों को नहीं पता था, हाथ उठाइए। अच्छा, हाथ संस्कृत है ना, अंग्रेजी में क्या? हैंड है ना। नोस संस्कृत में क्या है? नासिका, नोस। डेंट दंत। इस तरह से हृदय, हार्ट। आप पाओगे ये भाषा जो अंग्रेजी भाषा है ये पूरा पूरा संस्कृत लिया हुआ है, मगर हम खुद ही इस पर इस बात को नहीं बताते तो औरों को कैसे पता चलेगा? बाकी लोग एक्नॉलेज नहीं करते इस बात। जैसे महीनों का नाम है, ये सब महीनों का नाम संस्कृत में है, आपको पता है? नहीं पता। कितने लोगों को नहीं पता, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, देखते हैं, संकोच नहीं करना हाथ। अच्छा, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ। आपने सुना होगा हमसे। दश अंबर माने दसवीं आकाश, नव अंबर नौवीं आकाश, अष्टम्बर अक्टूबर आठवीं आकाश आठवीं महीने, सप्तम्बर सातवीं महीने, फाल्गुन फेब्रुवरी, ये फाल्गुन है, फेब्रुवरी फाल्गुन है ना अभी तो। नया साल मार्च में गुड़ी पड़वा के दिन ही शुरू होता है। पूरी दुनिया में एक समय था जब नया साल मार्च में करते थे, पर अभी 500 साल पहले एक अंग्रेजी राजा को लगा नहीं जनवरी से नया साल शुरू होना चाहिए, मार्च में नहीं, तो उसने बदला, मगर लोग माने नहीं। तब जो फिर भी करते थे उनको उनको खोसने के लिए उन्होंने फूल्स डे किया, अप्रैल फर्स्ट, मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल 1 तारीख तक लोग नया साल मनाते थे। फूल्स डे का उद्गम स्थान यही है, लोगों को अपमानित करने के लिए जो मार्च में नया साल मनाते हैं। चलो अभी तो हम लोग आ गए, फिर भी हमें भारत में जो भूगोल के हिसाब से प्रकृति के हिसाब से जो नया साल होता है उसी को तो हम मानते हैं, इसको भी नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या गुड़ी पड़वा मनवा मनाते हो ना सब लोग यहाँ? हाँ वही सच्चा नया साल है।

करे तुमने देखा रे ये नासिक को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं। मर एक था वहां पर अंग्रेजों के काफी दुकाने हैं या दुकान में अंग्रेजों की चित्र लगी हुई थी। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में इसमें यही दर्शाता है हमारे अभी आत्मबल बढ़ाना है, अभी बड़ी नहीं है। आत्मबल बढ़ाएगा तो जीवन में सृजनात्मकता भी बढ़ जाएगी, कुछ भी करने के लिए उमंग जागेगा, उत्साह जागेगा और किसी भी चुनौती को हम हाथ में लेने के लिए हमारे भीतर ऊर्जा जागेगी। हाँ, तो आवश्यक है बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको आत्मबल बढ़ाना है। आत्मबल बढ़ता है ज्ञान से, ध्यान से और गान से। गाना गाना चाहिए मिलके सबको, जैसे आज राम रक्षा कवच सबने मिलके चैंट किया, सबने उच्चारण किया राम रक्षा कवच की। इसी तरह से कुछ न कुछ ज्ञान की बातें रोज सुनो, पढ़ो, 10 मिनट 15 मिनट भी करो तो दिमाग साफ रहता है। हाँ, जीवन नश्वर है भाई, देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को आप जानते हो वो सब चल बसे कि नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं जीवन में जो एक कोई भी नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। लोग तो गए उस पार। ये जो संसार है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये बहुत लेशमात्र थोड़ा सा ही है, एक अंश है सत्य का, पूर्ण सत्य नहीं है। इस बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को मिला जिसने कहा ये दुनिया सच नहीं है। 3 साइंटिस्ट ने ये बात, पता है आपको कितने लोगों को नहीं पता था, हाथ उठाएंगे? ओहो, इस बार पिछले साल माने 2022 की नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्होंने क्या पता लगा, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, हमारा पंचेंद्रिय से अनुभव करते हैं, ये कुछ भी सच नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये उन्होंने पता लगा। जो लगता है ये कैसा है, जैसे मृग मरीचिका, पानी का दिखता है मगर पानी है नहीं वहां। इस तरह से जो दिखता है दुनिया ये रियल नहीं है। आप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, हमने कह रहे भाई ये तो हम सदियों से कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ने तो यही तो कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही तो बोले, सारा सपना है। आज विज्ञान वहां पहुंचे जहां अध्यात्म पहले से अध्यात्म की डगोरा पीटते आई है। इसमें आपको भी ताली बजाना चाहिए। विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान वेदांत से हाथ मिला लिया, वेदांत की बातों को कह रहे हैं, उसी स्तर पर आए हैं। मगर हम वेदांत माने जिसका दांत ने वेदांत समझते, वेदांत किसके लिए, जो बूढ़े हो गए कुछ नहीं वो वेदांत, वेदांत वो पढ़े, ऐसा नहीं। जीवन को सुगम बनाने के लिए, स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हमें वेदांत की आवश्यकता है। ऐसा मुस्कान जो आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ये सबकी इच्छा है ना। ऐसा सुख मिले जीवन में जिससे दुख की कोई गंध नहीं हो, ऐसा आनंद जीवन में मिले जिससे कोई दुख ना हो, ऐसी शांति मिले जो भंग ना हो, ये सबकी इच्छा रहती है, सब चाहते हैं ये।
और ये तभी हो पाएगा जब हम ज्ञान की गंगा में रोज रोज डुबकी लगाते रहेंगे। ठीक है ना। अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं।

0: आज राम ध्यानी कराता हूं। राम आने पता क्या है? राम माने रोशनी, रश्मि, प्रकाश। माँ माने मैं। राम माने मेरे दिल में जो रोशनी है, मेरे भीतर जो प्रकाश है, उसी को राम कहते हैं। मन सीता है, आत्मा राम है। गीत भी है ना, आत्मा रामा आनंद रमना अच्युत केशव हरिना रायण। आत्मा राम आनंद में है, आनंद रमना, वहाँ आनंद ही आनंद है। अच्युत, वो कभी उसकी च्युति नहीं होती है। अकेशव है, वो सर्वसमर्थ है। और नारायण, ये सब हमारे भीतर ही है। और प्राण रूपी हनुमान जी के सहाय में होश रूपी लक्ष्मण, आत्मा रूपी राम सीता को प्राप्त, वापस प्राप्त कर लेते। सीता मनमाई, मनमाई जब रावण के अहंकार के ओढ़ में आ गई, उस अहंकार को खत्म करके, इसको कहते हैं अध्यात्म रामायण। एक अध्यात्म रामायण है जो छोटा सा है, उसमें हमारे जीवन में ही रामायण दिखाते हैं। दशरथ, दश इंद्रिय है हमारे, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। शरीर ही अयोध्या है, माने अयोध्या माने जिस जो वध के लायक नहीं है वो अयोध्या है। शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं है शरीर को खत्म करने का। शरीर अयोध्या है, इसमें दस इंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्र जो है ना, दाशरथी, दशरथ, और दशरथ के पुत्र आत्मा राम। हनुमान जी को मुख्य प्राण देवता बोलते कि नहीं? मुख्य प्राण, प्राण ही हनुमान जी। पंच प्राण को कहते पंचमुखी हनुमान, हमारे भीतर ही हनुमान जी। हनुमान निरंतर है साथ में, और हनुमान के सहाय से ही श्री राम ने सीता से मिले। जब मन उचाट हो जाए, मन आत्मा से ओझिल हो जाए, दूर नहीं हो सकती, ओझिल हो जाए, प्राण के दरिए फिर से मिलन हुआ। हाँ? कौशल्य माने कुशलता पूर्वक, जब ये दसों इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कुशलता पूर्वक चले, प्रार्थना करे, तो आत्मा ज्ञान प्रकट होने लगा।
1: गुरुदेव, आपने जो जीवन को सुंदर बनाने का त्रिसूत्री बताया है, साधना, सेवा और सत्संग, उससे जीवन में उसका प्रभाव समझ में आ रहा है, पर इसमें प्राधान्य किसको देना चाहिए?
0: ने तीनों, आप ये पूछोगे नाक, आंख और कान में किसको प्राधान्यता दूं? मैं बोलूंगा सब तीनों को दो। अच्छा, एक और बात हम करना चाहते हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया 2 साल कोरोना के बीमारी से जूझ रही थी। ये आर्टिफिशियल वायरस था, आपको मैं बताऊं, ये कुदरती नहीं थी। कुछ देशों ने साजिश करके दुनिया की पॉपुलेशन खत्म करने के लिए ऐसी वायरस बनाया, मगर भारत हमेशा जीव दया और जीव दान में विश्वास करता रहा। तो हमने अपने हमारे हमको मन में कुछ सोचा, कुछ जड़ी बूटी के बारे में, फिर हमने अपने वैद्यों को बुलाया, आयुर्वेद और सिद्धा औषधि दोनों के, फिर एक फार्मूला तैयार करी, उसका नाम हमने NOC-19 रखा। क्यों? जिनको भी देते हैं जो पॉजिटिव, 3 दिन में नेगेटिव होते जा रहे हो, जो कोविड पॉजिटिव होते हैं ना, तीन ही दिन में, कभी अब दो दिन में नेगेटिव हो रहे हैं। इसका असर बहुत ज़बरदस्त था। फिर भारत के 14 हॉस्पिटल में इसका ट्रायल हुआ। अब भारत सरकार ने इसको माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड के लिए ट्रीटमेंट के दवा के रूप में मंजूरी दी है। इतना ही नहीं है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको कहते कि 100% सब वायरस को ब्लॉक कर दिया, सारे सारस वायरस को, कोई सिम्टम्स नहीं होता है, सब होता 100% वायरस को ब्लॉक करती है। उन्होंने ये लेबोरेटरी टेस्ट में ये नतीजा निकाला, जबकि वैक्सीन का असर 60%, उसकी एफिकेसी कितना 60% कुछ ऐसा है, वो भी कुछ समय के लिए, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वायरस को रोक देती है। अभी आपको लगा किसी को कोविड था, मैं उनके बाजू में बैठा, चिंता न कर, घर आके एक नॉक 19 ले लेना, खाने के साथ ये क्या दो, आप देखोगे एकदम बढ़िया रोग। सिर्फ कोविड ही नहीं है, किसी भी तरह की वायरस के लिए ये दिव्य औषध है। आप सब अपने ले लेना, एक एक घर में रखना और किसी को भी देना जरूर, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सुना है ना नाम स्टैनफोर्ड में, और जर्मनी के भी, जर्मन इनोवेशन सेंटर जो है वहाँ पर भी इसका वो हुआ है, टेस्ट हुआ, वो सब लोगों ने यही सर्टिफाई किया, इट्स अ बेस्ट ब्लॉकर ऑफ वायरस। वो वायरस को हमारे सेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, बता रहे थे। तो भारत की चीज़ है, इसको हमें सब जगह बताना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ वायरस आए तो तुरंत कुछ ना कुछ दवा खाते रहते। ये इम्यून बूस्टर भी है और वायरस ब्लॉकर भी है, कोई हार्म नहीं, कभी भी ले सकते हैं आप।
1: जय गुरुदेव।
2: गुरुदेव, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ हो सकती है?
0: क्यों नहीं कर सकते हो। आध्यात्मिक उन्नति तो हमारी आत्मा के लिए, ताकि तो आप आत्मा और शरीर का मेल हो, शरीर के लिए आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, भोजन चाहिए, सब चाहिए, कपड़ा मकान सब चाहिए, और जीने के लिए अध्यात्म चाहिए, ये दोनों साथ साथ कर सकते, क्यों नहीं, अवश्य होता। राजा जनक पूरा राज्य करते थे अध्यात्म के, जनक ऋषि राजर्षि रहे। श्री रामचंद्र ने इतना बड़ा जिम्मेदारी ली और वो आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे क्या? अरे अध्यात्म ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, एक योद्धा को दिया, वो भी कहाँ, युद्ध के प्रांगण में दिया। अर्जुन तो चाहते थे मैं सब छोड़ के मैं चला जाऊँ, हिमालय में चला जाऊँ, युद्ध क्यों करूँ, मगर भगवान ने करने दी क्या उनको? श्री कृष्ण ने भागने दिया क्या? पता नहीं कैसे क्या क्या बोल बोल के उनको बोला, नहीं भाई दोनों करो। हाँ
2: गुरुदेव, कोई भी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है?
0: सिद्धि की प्राप्ति निष्ठा से। ये छोटी छोटी सिद्धियों को मत सोचो, किसी के मन में क्या है वो पढ़ दें, ये सब एक क्षुद्र सिद्धियाँ बोलते हैं। एक कर्ण पिशाची करके सिद्धि विधि करते हैं, वो कर्ण पिशाची आके कान में बोल देती है, ये वहाँ फलाना आदमी बैठा, ये है वो, उसका पास्ट सब अच्छा होता है, उनका कोई भी फ्यूचर प्रोडिक्शन बनता ही नहीं है, क्यों खो ही नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी सिद्धियों में पढ़ना नहीं चाहिए, मगर क्यों, वो कुछ दिन के लिए चमत्कार चमत्कार लगेगा, फिर बाद में अधोगति को ले जाते हैं, पर सच्ची सिद्धि ये है, जीवन में परफेक्शन आ जाता है। जरूरत से अधिक समय से पूर्व सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, यही सिद्धि है। और वाक सिद्धि, जो आप कहते हो वो होने लगता है, होता रहेगा, ये तब सहज सिद्धि है। ये साधक के जीवन में अपने आप आएगी ये सब। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सिद्धि निश्चित रूप से होगी। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों के यहाँ आप जो चाहते हो जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है? यहाँ साधक हाथ उठाइए, कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती रहती है? देखिए देखिए, सब पे आजू बाजू में देखिए जिनका नहीं हो रहा है।
2: तो संबंध बिगड़ जाते हैं, उन बिगड़े संबंधों को वापस कैसे सुधारे?
0: अरे ऐसे जाके उनसे बात करो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। एक दो बार तुम्हें अपमानित करेंगे, फिर बोलेंगे तुम्हें शर्म नहीं है, फिर बाद में आ जाएंगे वो भी। अब बच्चों से सीखो ना, बच्चे रोज लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं।
2: गुरुदेव, राजकारण और धर्म कारण बहुत ही अलग अलग दिखते हैं।
0: राजकारण में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजकारण नहीं होने चाहिए।
2: गुरुदेव, कभी अच्छा सोचकर भी लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसको कैसे फेस करें?
3: आज के लागी द आर्ट ऑफ लिविंग को संयोजन में संचालित यू कार्यक्रम अमृत धारा एति नहीं।

0: बिहान को 5 बजिसके अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो। प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग
1: आज श्री सालीभानी साके 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 60 संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल श्रावण महिनाको 15 गते शुक्रबार तदनुसार जुलाई महिनाको 31 तारिक सन 2026 श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि धनिष्ठा नक्षत्र सौम्य आनन्दादि योग तैतिल करण धाता योगा आज चन्द्रमा मकर राशिमा अवस्थित श्री सूर्य दक्षिणायण यो महिना श्री सूर्य कर्कट राशिमा अवस्थित आज काठमाडौँमा अहिले 5:27 सूर्योदय हुनेछ। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनीय कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा चाहिँ अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।